0: ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: लड्डू बोल लड्डू
0: लड्डू
1: लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंधू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: प्यार
0: प्यार प्यार।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

हवा हवा ए हवा, मुझे तो उड़ा ले खवून, हमें तो उड़ाई ले क्लैर। मिका सिंह, प्रकृति ककर एंड गौरव रोशन से आप गीत को सुने एंड उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, सुन गाना।

पूरा तोड़ दिन के देवे है तोड़ साथ, के तोड़ साथ सोते है, के तोड़ साथ जागे है, के कर साथ तू ओतो में घूमे है, और के कर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो।

0: ये उजाला रेडियो है हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। सुबह का उजाला हो या रात का समा, निशा की आवाज रहेंगी आपके दरमियान। जी हाँ, जैसे आप जानते हैं हर देंसदा की सुबह 9 से 12 बजे तक हम प्रोग्राम पेश करते हैं और आपकी बेपना प्यार की वजह से आप हर मानदाह की रात 9 से 12 बजे रात तक इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंदीदा रेडियो स्टेशन उजाला रेडियो पर, क्योंकि हर रंग में है जिंदगी और हर जिंदगी में है सब रंग। तो सुरों के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए। खुदा आपको हर उस चीज से नवाजे जिसमें आपके लिए खैर व बरकत और दिल का सुकून व इत्मीनान हो।
1: शुक्र

नाज शरीफ पेश था मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में, कलाम था शबाब मिनल का। अब लीजिए रूहानियत अंदाज में भजन पेश है श्री हरिओम शरण की आवाज़ में, तर्ज है ऐसा प्यार बहारे मैया।

दुनिया। प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। यूं ही रंजिशों में गुजर गए, कभी वो खफा कभी मैं खफा, चाहतों के मोर पर, चाहतों के मोर पर कभी वो रुका कभी मैं रुका, वही रास्ते वही मंजिले, ना उसे खबर ना मुझे पता, बस अपनी अपनी आना में गुम, कभी वो जुदा कभी मैं।

शेराना अंदाज में पेश थी ये गज़ल, आवाज़ थी महेंद्र कपूर साहिब की, ख़ुद उन्हीं की मौसिकी थी, कलाम था कमाल हसन का। ये नज़र मुंतज़िर है तेरी आज भी, दिल किसी और से आशना ही नहीं, मैं क्यों रास्ता दूँ किसी और को, जब कोई तेरे जैसा बना ही नहीं, शाम से आँख में नमी सी है।

श्याम से आँख में नमी सी है, आशा भोसले से पेश थी ये गज़ल। मौसिका राहुल देव बर्मन की मौसिकी थी, कलाम था शायर गुलजार जी का। दिल की बातें हर किसी से नहीं कह जाती, पहचान भी हर किसी से बनाई नहीं जाती। दूर हूँ इसलिए अल्फाज ज़्यादा है, पास आ जाओ तो शायद आंखें ही सब कह जाएंगी।

दिल छू लेने वाली गजल पेश थी स्वर की मालिका बेगम अख्तर की आवाज में और महान शायर मीर ताकी मीर का कलाम था। पैसे की धुन में खोया वो मासूमियत का जमाना, भूल गया इंसान अपनों से दिल का रिश्ता निभाना। सोना चांदी तो कमाया उसने दिन रात जाग कर, पर खो दिया सुकून से सोने का वो पुराना ठिकाना।

मतलब का गाना पेश था हेमंत कुमार की आवाज में, संगीत का रवि का संगीत, तर्ज को लिखे थे शायर साहिर लुधियानवी ने। अब आइए सुने मोहम्मद रफी साहेब से येगी।

कमाल का गीत पेश था, फिल्म नया दौर से लिया है। ओपी नैयर का सजाया संगीत, बोल था साहिर लुधियानवी का। अगला दो गाना पेश है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सुंदर गीत पेश था, संगीत से सवारे थे सचिन देव बर्मन, गीतकार था मजरू सुल्तानपुरी ने। ये हवा ये फजा और ये रात तारों भरी, धड़कनों में जाग रही है एक दास्तान नई, तेरे बाहों में सिमट कर मिटा दे सारे फासले, इस हसीन मौसम में खो जाए हम तुम कहीं।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा लता जी की आवाज में। आजकल के गीतों में वो बात कहाँ। मैं जानती हूँ कि आप सबका दिल अभी भी उन पुराने सुनहरे गीतों के लिए धड़कता है, तो आइए सुने मुकेश जी की आवाज में ये गीत।

सुनहरे दौर का सदाबहार गीत पेश था कल्याण जी आनंद जी का संगीत रचना, गीत रचना इंदिवार का था। आशा भोसले से पेश है ये भरकता गीत।

0: निकोला।
1: जी हाँ, मन ही मन आप भी खुश हुई इस भरकता गीत सुनकर, है ना? तो लीजिए पेश है अगला गीत गीता दत्त की आवाज में, वो भी किसी से कम नहीं थी, हर शैली में आसान से गाती थी, चाहे रॉक एंड रोल हो या डर्ट भरा गीत।

खुश मिजाजी गीत पेश था गीता दत्त की आवाज़ में, और इस गीत में चार चांद लगाने वाले थे अपने संगीत से संगीतकार ओपी नैयर। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये एहसास कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी, एहसान तेरा होगा।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। यहाँ से प्रोग्राम का दूसरा भाग शुरू करते हैं, यानी कि फिल्मी दुनिया पेश किया जाएगा।

ये आवाज़ स्वर की देवी लता मंगेशकर की आवाज़ है जो कायनात में सदा गूंजती रहेंगी। हम सब के लिए ये आवाज़ एक रूहानी सौगात है। संगीत के चाहने वालों के दिलों में ये आवाज़ घर कर गई। आज से लेकर कुछ प्रोग्रामों में इस महान मारूफ शख्सियत के बारे में हम बयां करेंगे। स्वर की मालिका लता मंगेशकर के बारे में, उनकी आवाज़ के बारे में बयान करना तो सूरज को रोशनी दिखाने की बराबर है। फिर भी हम कोशिश करेंगे लता जी के संगीत सफ़र के बारे में इत्तला करने को, और कैसे थी लता जी की बचपन, क्या हम सब के बचपन जैसे थी या सबसे अलग। हाँ, आप सुनने वालों से ये कहना है कि प्रोग्राम के दौरान एक के बाद एक लता जी की आवाज़ में दिल छू लेने वाले नगमे सुनने को मिलेंगे, जैसे कि ये अमर गीत।

फिल्म वो कौन थी का नगमा पेश था लता मंगेशकर की आवाज़, मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी और शायर राजा मेहदी अली खान का कलाम इस नगमा को अमर कर दिए। जब भी लता जी लाइव कॉन्सर्ट के लिए नगमे चुनती थी तो अक्सर ये नगमा शामिल करती थी। हम सब जो संगीत सुनने में शौक रखते हैं, लता मंगेशकर की गाने बचपन से सुनते आए हैं, उनकी रूहानी आवाज़ से कितना सुकून मिलते होंगे। पर कैसे थी लता मंगेशकर की बचपन, कुछ प्रोग्रामों में हम बयां करेंगे। पहले हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।

फिल्म नागिन में से ये गीत लिया है और ये गीत अदाकारा वैजयंतीमाला पर फिल्माया गया था। साथ में थे अदाकार प्रदीप कुमार। तो जैसे मैंने कहा, हम सब बचपन से लता मंगेशकर के गाने सुनते आए हैं, पर उनकी बचपन कैसे थी? सब 5 भाई बहने थे, लता, मीना, आशा, उषा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर का बाप दादा गोवा के रहने वाले थे। रिश्तेदार गणेश भट्ट और यीशु भाई के कई बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था दीनानाथ। माँ यीशु भाई महसूस किया कि बेटा दीनानाथ अलग था। उसे संगीत सुनने और गाने को शौक था, इसलिए बेटा को गुरुजी के पास सारंगी सीखने को कहा। पर बेटा दीनानाथ कुछ ही दिन सारंगी सीखा, फिर तबला। इसमें भी मन नहीं लगता था। एक दिन वो गुनगुना रहा था तो उनकी गुरुजी के बीवी ने कहा, बेटा आप सारंगी नहीं, तबला भी नहीं, आप गाने पर ध्यान देना। इसी तरह यीशु भाई का बेटा दीनानाथ शास्त्रीय संगीत पर फिर ध्यान देने लगा, जिसमें उनको सुकून मिलता था। सुबह शाम वो रियाज करता था। ये देखकर गुरुजी खुश था और जाने माने गायिकाओं ने दीनानाथ की आवाज़ को तारीफ करते थे। दीना को एहसास था कि लोग उनकी आवाज़ पसंद करते थे। कई थिएटर की डायरेक्टर्स दीनानाथ को मौका दिया थिएटर में गाने और साथ में एक्टिंग करने को। थिएटर के बाद दीनानाथ छोटी उम्र में किर्लोस्कर संगीत मंडली ग्रुप में उसे शामिल किया गया। गांव-गांव और शहरों में उनके बारे में चर्चा होता था, उनकी आवाज़ और अदायगी पर। कई बड़े बड़े संगीत के जाने माने लोग दीनानाथ से कहा कि उसे एक ही शैली को, मतलब स्टाइल को अपनाना है। तो उसने खुद एतमाद के साथ बाल गंधर्व शैली में ध्यान देने लगा। मतलब जैल फर्जेकर से कहा कि वो किसी के नकल कभी नहीं करेगा, उसे अपने आप पर यकीन है। हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की बाप दीनानाथ के बारे में, कैसे था उनके बचपन। एक गीत के बाद कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म बड़ी बहन में से ये गीत लिया है जो नेखती नेखन फेतह में रिलीज हुआ था। संगीत से सवारे थे हुस्नलाल भगत राम, आवाज थी स्वर की देवी लता मंगेशकर की। और हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर का वाली दीनानाथ की, कैसे था उनके बचपन। इस गीत से पहले आपने सुना कि दीनानाथ को अपने आप पर, अपने काबिलियत पर यकीन था, पर किस नाम से लोग उसे दुनिया में पहचानेंगे। वो खुद अपनी पहचान बनाना चाहते थे। दीनानाथ अपने परिवार के साथ एक छोटा सा गांव मंगेशी में रहते थे और परिवार का नाम था मंगेश। और जैसे मैंने कहा, दीनानाथ खुद अपना नाम कायम करना चाहते थे, इसलिए अपना नाम मंगेश के साथ कर शामिल किया और कहा कि दुनिया उसे अब दीनानाथ मंगेशकर का नाम से पहचानेगा। वो किर्लोस्कर संगीत मंडली गुरु के साथ महाराष्ट्र से बाहर दूसरे शहरों में मकबूल था। दीनानाथ 18 साल के उम्र में अपना खुद का मंडली कायम किया, बलवंत संगीत मंडली, जिसमें साथ शामिल किया कृष्णा राव कोल्हापुर, दयारन तख्त की मशहूर अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुर का दादा जो था। दीनानाथ की आवाज़ और नाटक इतना मशहूर था कि सिर्फ उनका नाम सुनकर दूर दूर से लोग प्रोग्राम देखने आते थे। उनकी आवाज़ सबसे अलग थी, पतला थी। एक दिन किसी ने दीनानाथ से कहा, दीना आपकी आवाज़ कुदरत की देन है पर ज़रा सा पतली, आप हर रोज़ एक चम्मच ब्रैंडी पीना तो आप ज़रूर फ़र्क महसूस करेंगे। जो उसे कहा गया वो किया, पर एक चम्मच के बदले रोज़ घूंट पर घूंट पीने लगा। पर दीनानाथ मंगेशकर को अब रोकने वाला कोई नहीं था। जिन्होंने थिएटर की कहानियाँ लिखते थे, फ़खर से बलवंत संगीत मंडली के लिए लिखते थे, और गुरु वासे भव जिसे दीनानाथ क्लासिकल संगीत सीखते थे, उल्टा वो अब दीनानाथ का शागिर्द बनना चाहते थे। ऐसा महान मारूफ फनकार था श्री दीनानाथ मंगेशकर, जो लता, आशा, उषा, मीना और हृदयनाथ का वाली था। पहले हम एक गीत सुनवाते हैं, फिर कहानी हम आगे।

फिल्म टावर हाउस में से ये गीत लिया है। संगीत देने वाले थे रवि। श्री दीनानाथ मंगेशकर के बारे में हमने आप सुनने वालों को छोटे रूप में बयान किया। माँ का दर्जा भी अहम है, तो जैसे हमने कहा, गीत से पहले दीनानाथ मंगेशकर 18 साल का हो गया था और शोहरत की बुलंदियों पर था। अब कई बड़े बड़े ख़ानदान से शादी का पैगाम आते थे, उन सब में गिनती थे सेठ हरिदास रामदास लाड, जिसके 4 बेटियां थी, जमुना, नर्मदा, शिवंती और गुलाब। सब तय होने के बाद सेठ हरिदास की बेटी नर्मदा की शादी हुई दीनानाथ मंगेशकर से। फिर 4 साल बाद नर्मदा और दीनानाथ का घर बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने के बाद नर्मदा संभला नहीं और फिर थोड़ी ही दिन बाद नर्मदा ने दुनिया से अलविदा लिया। बच्चे को नर्मदा की छोटी बहन शिवांती संभालती थी। अब शिवांती से बेहतर माँ का प्यार और कौन दे सकती है। इसलिए सेठ हरिदास ने दीनानाथ से इल्तजा किया, सिर से अपना पगड़ी उतार कर सामने रखा और कहा, मेरी बेटी शिवंती से आप शादी कर ले। तो इसी तरह दीनानाथ मंगेशकर ने नेहती सेफ नतवेतक में नर्मदा की छोटी बहन शिवंती से शादी किया। पहले आपको एक गीत सुनवाते हैं। जुगल गीत है, आवाजें है लता मंगेशकर और करण दीवान की आवाजों में।

भी वही रहूं मेरा साजन जहां रहे। इस गीत से पहले आपने सुना कि नर्मदा के गुजरने के बाद दीनानाथ मंगेशकर ने उनकी छोटी बहन शिवांती से नेहतीन सेवनत्वेतक में शादी किया। कहानी दिलचस्प है, अगले प्रोग्राम में हम बयान करेंगे, आप प्रोग्राम को सुनते जाना।

अभी हमने स्वर की देवी लता मंगेशकर के बारे में बयान किया, किस खानदान से थी और उनके बाप दादा की पैदाइश कहाँ हुई थी। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं, आइए सुने ये गीत।

अमर गीत पेश था रोशन की मौसिकी थी, तर्स लिखे थे शायर साहिर लुधियानवी ने। अगला गीत पेश है गायिका आशा भोसले की आवाज़ में।

सदाबहार गाना पेश था, गायिका थी आशा भोसले। फिल्म सवेरे वाले गाड़ी में से लीजिए अगला गीत पेश है।

संगीतकार राहुल देव बर्मन का सजाया संगीत और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा तर्ज था, आवाज़ें थी सुरेश वाडकर और आशा भोसले की। अगला गीत पेश है, गाने वाले हैं मुकेश जी।

खूबसूरत अंदाज में पेश था कुमार सानू की आवाज में ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा तर्ज था। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। अब आइए सुने अगला गीत, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की आवाज में।

सदाबहार गीत पेश था गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा तर्ज था आवाज कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की। अब आइए सुने फिल्म किस्मत में से अगला गीत गाने वाले हैं महेंद्र कपूर।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये गीत। संगीत से सवारी थे ओपी नैयर, बोल था ऐसा बिहारी का। अजीब मोड़ पर लाकर खड़े कर दी है जिंदगी, ना आगे बढ़ने का रास्ता है ना पीछे लौटने का हौसला।

अभी आपने लता मंगेशकर से ये खूबसूरत नगमा सुना। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। उजाला रेडियो जो अपने स्वरों से घर घर को उजाला करते हैं।

फिल्म मेरा दोस्त में से ये गीत लिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सजाया संगीत था और गीतकार आनंद बख्शी की। दुल्हन बनी हुई खरी हो तुम लिबास नूर में, कि सर झुका रही है चांदनी मेरे हुजूर में, के आसपास कितने ख्वाब झिलमिला गए। The text is so romantisch, ik zal mijn best doen om het in het Nederlands te vertalen. Je staat daar in een gewaad van puur licht, als een bruid, zo mooi dat zelfs het maanlicht buigt, uit respect voor jouw schoonheid.

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा और आवाज़ में चार चांद लगाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी साहब और तर्ज को लिखने वाले थे महान शायर मजरू सुल्तानपुरी। अब आइए सुने लता जी से ये नगमा।

अजीब दास्ता है ये। फिल्म दिल अपना और प्रीत पराये में से ये गीत लिया है। शंकर जयकिशन संगीत से सवारे थे, बोल था शैलेंद्र का। अब आइए सुने गीता दत्त से ये गीत।

जी हाँ, मन ही मन आप भी खुश हुई इस भड़कता गीत से, है ना? अब आइए सुने किशोर कुमार से अगला गीत।

कमाल का गीत पेश था राहुल देव बर्मन, संगीत से सवारे थे, बोल था शायर जुगेश का। अर्ज है, तेरे चेहरे की वो खूबसूरत कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगता हूँ हर सफर में साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहाँ से लाऊं।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, खादिमा थी।

0: चल उड़ जा रे।
1: अम्सदम के रहने वाले समस्त परिवार जद्दू बहादुर के साथ ये सूचना को करे हैं कि बीते शनिचर 3 तारीख अक्टूबर को जातदग 3 अक्टूबर को 67 साल की आयु में लेफ्टाइट फॉर्म 67 यार अम्सदम के रहने वाले बेटा विनोद और बेटा जिसवन जद्दू और बेटी अंशला जद्दू की माँ माइकल और आशना की सास शायरा और सलीना की ओमा अम्सटरडम स्खलक बर्गस्ट्रात के रहने वाली विधवा कार्लावती रामदीन जद्दू का देहांत हो गए हैं, जो कि विधवा थे देवेंद्र जद्दू का और जिन लोग ज़्यादा कार्ला के नाम से जानते थे। अम्सटरडम के रहने वाले समस्त परिवार जद्दू बहादुर के साथ ये सूचना को करे हैं कि बीते शनिचर 3 तारीख अक्टूबर को जातदग 3 अक्टूबर को 67 साल की आयु में इन लेफ्टाइट फॉर्म 67 यार अम्सटरडम में बेटा विनोद बेटा जिसवन और बेटी अंशला जद्दू की माँ माइकल और आशना की सास शायरा और सलीना के ओमा अम्सटरडम स्खलक बर्गस्ट्रात के रहने वाली विधवा कालावती रामदीन जद्दू का देहांत हो गए हैं, जो विधवा थे स्वर्गीय देवेंद्र जद्दू का। सूरीनाम देश में इंदिरा गांधी वह के रहने वाले थे। 38 से आखिरी मौका है विदाई लेने के लिए। मंगलवार दिन 6 अक्टूबर के रात को 7 से लेकर 8 बजे तक फनफ सावंस 7 tot 8 uur वेस्टगार्ड ook meer weg 275 Amsterdam में Dag Kriya Kyo Kia Jaiga, Budwar, aanstaande woensdag is de crematie. Sjaam met 10 bc vanaf 3 uur, Westgaarde Crematorium, ook meer weg, Doosopachetter, Amsterdam mee. Jan Karkele, Tarker Merdige, 06-22-65-53-41. 06-22-65-53-41. Samus Parivar, Jan Pahjansi, Nividen hem, is Gawarko, Oud, Doer, Tak Pahotjad in de claim. Ujala Radio, Samus Parivar, Jaduke, Dugme, Shamil hem.

चलिए प्रोग्राम में सुन वालों, हम आपको एक नगमा सुनाने को जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और ये नगमा होना चाहिए, बहुत बिजार गाना है हम आपको सुनाने वाले हैं। खनीत में एनू जालस कॉफी चाय मेरा शो।

एंड मेरी दुनिया है तुझ में कहीं और तेरे बिना मैं तो कुछ भी नहीं। सोनू निगम एंड हाँ सोनू निगम के साथ आप सुने कविता कृष्णमूर्ति से फिल्म वास्तव का गीत और यह है उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप देखें उजाला पंत एंड

तेरी याद आई। लता जी के साथ अमित कुमार की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म रोमांस से निकाला हवा। और इसी यादें पर एक और गीत आप सुनेंगे, उदित नारायण नंद अलका जी से।

0: गाने जो दिल को छू जाए, उजाला रेडियो पर तू जाने है तो।
1: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए, शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है मेरा।

तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों, तो दीजिए आप फरमाइश ऑप उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑप उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट रहा तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑप उजाला रेडियो।

0: herhalen we weer dit programma doorgaat in. Voor de mensen, Jun Kam, Mebhirle, Onazun Pauhe, Alraadke, Tani Mangi, Onspankering. Dan luister je naar Coffee Chai Cake Show, Abu Jal Radio.
1: Everybody, this is Malaika Arora Khan.
2: Hi, Mehu Farah Khan.
3: Hi, this is Rani Mukherjee.
4: I'm Akshay Kumar.
5: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan, and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
6: This is Ujala Radio. Namaskar. आपका स्वागत है. मैं हूँ उजाला डीजे. आज संगीत के साथ चाहत और अपनापन जैसे एहसासों के लिए थोड़ी जगह है. कभी कोई छोटी सी बात मन में रह जाती है. कभी किसी का साथ ही बहुत होता है. आप आराम से सुनिए. शुरुआत करते हैं रोमांटिक मैशअप 2 से.

चाहत कितनी है इसका हिसाब लगाना आसान नहीं। किसी की याद रोजमर्रा की छोटी बातों में आने लगे तो उसके लिए अलग से बड़े शब्द भी नहीं चाहिए होते। इसी ख्याल के साथ अब सुनिए, तुझे कितना चाहने लगे।

सुना अरिजीत सिंह और मिथुन का तुझे कितना चाहने लगे। इस नाम में चाहत के धीरे धीरे बढ़ने का कितना सहज एहसास है। कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस अपने मन की एक बात।

रोज की बोलचाल में कितना जाना पहचाना वाक्य है। कभी पुरानी तस्वीर देखते हुए लगता है कि इतना समय कब बीत गया। तब याद आती हैं वे छोटी बातें जिन पर उस समय ध्यान भी नहीं गया था। अब फिल्म वॉर से सुनिए घुंघरू।

कभी मन की बात बहुत कम शब्दों में सामने आ जाती है, लंबी भूमिका की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगला शीर्षक भी ऐसा ही सीधा है, तू चाहिए।

आर लिसनिंग टू उजाला रेडियो। अभी आपने सुना तू चाहिए। इस छोटी सी बात में किसी खास इंसान की जगह कितनी साफ दिखाई देती है। चाहत के बारे में कहने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कभी इतना कहना ही काफी लगता है।

दुर्बीन और रागिनी का लैम्बर्गिनी। अब एक ऐसा नाम जो किसी बात के कल्पना से भी आगे होने का एहसास जगाता है। सुनिए सोच ना सके।

कुछ एहसासों को समझाने बैठें तो शब्द थोड़े कम पड़ जाते हैं। सोच न सके का नाम इसी गुंजाइश की याद दिलाता है। अधूरी रह गई बात भी कभी अपने आप में सुंदर होती है।

किसी को पुकारने में भी कितना अपनापन हो सकता है। साथी का ख्याल सिर्फ बड़े मौकों तक सीमित नहीं, रास्ते में हुई थोड़ी बातचीत, साथ बैठकर चाय पीना या बिना कुछ कहे पास रहना भी उसमें शामिल है। कितना प्यारा है यह साधारण सा संबोधन।

दिल दियां गल्ला यानी दिल की बातें। कुछ बातें कहने के लिए बस सही पल मिलना चाहिए। कभी एक शांत बातचीत में वह सहजता मिल जाती है जो सोच समझ कर तैयार किए हुए शब्दों में नहीं मिलती। ये ख्याल अपने आप में कितना आत्मीय है।

सफर में साथ देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा है इन कुछ पलों ने आपके दिन में अपनापन जोड़ा होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू उजाला रेडियो। अंत में सुनिए आफरीन आफरीन।

पहले प्रोग्राम में सुन वालों, हम आपको एक नगमा सुनाने को जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और ये नगमा होना चाहिए, बहुत विशाल गाना हैगा हम आपको सुनाने वाले हैं। खनित में एनु जालस कॉफी चाय मेरा शो

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net

Something Wrong. You are. तू जाने तो ऊ जाना सोना चिड़िया चिड़िया चिड़िया।

ऊजा रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बे प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो, उजाला रेडियो।

साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम स्ट्रैंडफ्लीट के रहने वाले परिवार से उपाव बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शनिचर को 75 साल की आयु में फैफन सीफन तखियार और पति श्रीमान मंगरू सेवपाल की पत्नी लड़कन शर्मिला विनोद रजेश और संजय सेवपाल की मां दो पतो रविता सेवपाल बिंद्राबन पांडे और नताशा सेवपाल रामोतार के सास शरल रेहान स्टेफानो अनिशा मलेसा शैली संजय रायन शयन राजा अयाना अरासेली एंजल अफानी ओरोरा आर्यम प्रिंस और आर्या के नानी और आजी शाजाना रिफानो जिलानी इजाज लेफी शेरानो और सफीना के परनानी और पर आजी। आम्स्टर्डम स्ट्रैंडफ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु हो गई है। आम्स्टर्डम ओस्ट में बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। आम्स्टर्डम स्ट्रैंडफ्लीट से परिवार सेवपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शनिचर को 75 साल की आयु में फैफन सेफन तखियार और पति श्रीमान मंगरू सेवपाल की पत्नी लड़कन शर्मिला विनोद रजेश और संजय सेवपाल की मां दो पतो रविता सेवपाल बिंद्राबन पांडे और नताशा सेवपाल राम अवतार के सास शैरल रेहान स्टेफानो अनिशा मलेसा शैली संजय रायन शयन राजा अयाना अरासेली एंजल अफानी ओरोरा आर्यन प्रिंस और आर्या के नानी और आजी शाजाना रिफानो जिलानी इजाज लेफी शेरानो और सफीना के परनानी और पर आजी। आम्स्टर्डम स्ट्रैंडफ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु आम्स्टर्डम ओस्ट में हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के सुबह 10 बजे फ्रेदा खान स्टांड 3 ऊर किए जाएंगे। क्रेमाटोरियम वेस्खार्ड ओक मेरवैग 275-275 आम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 020-6995-337 020-6995-337। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार शिवपाल के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits. Op een paar plekken nog wel flinke vertraging. De A50 om te beginnen Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Knooppunt Bankhoeft 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij Rozenburg is de linker rijstrook dicht. Er staat nogal eens zo'n 10 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Daar is het nog altijd ook druk tussen Veenendaal en Rhenen. Over 3 kilometer is het file rijden met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला पिंडनाओ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियो जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौमे आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

हम आ गए हैं तो फिल्म आरज़ू का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में आप सुने और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। अगला गीत सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल से आप सुनिए।

ब्रिंग दे रोटी मान, ब्रिंग दे रोटी, निशाद सुल्तान की आवाज में फ्रॉम द वेस्ट इंडीज और उजाला रेडियो पर आज का प्रोग्राम में पेश की गई है।

उर्बलम होइगे गुलरी के फूल, इस गीत को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन ये जानना चाहिए आपको कि इस गीत को गाई है 9 साल की बच्ची साक्षी सुखा, जिसका नाम है साक्षी सुखा साक्षी सुखा नई खन यार औत। आप सुने और तुड़ुक न्यूनाडो वेस्ट इंडीज

पूरा तोड़ दिन के देवे है तोड़ साथ, के तोड़ साथ सोते है, के तोड़ साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम, रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़ के, शोला जो भड़ के, पहलू में बेकरार दिल,

बिन कोटरावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आर फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

पहले प्रोग्राम में सुन वालों, हम आपको एक नगमा सुनाने को जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और ये नगमा होना चाहिए, बहुत विशाल गाना हैगा हम आपको सुनाने वाले हैं। खनित में एनु जालस कॉफी चाय मेरा शो।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।